नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणे ताय सजगदेताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीयताम् देवदेवस्य नारायण जगत्पते स्तोरीय नामधानेन कथयिष्यशवा कथा सर्वे श्रोतार शब्दानां भवन्तु अवयो श्रीमद् भागवत को महाप्राण को दशम स्कन्न को पूर्वार्ध कथा को अहिले चारों अध्याय को बीच में कति कथा को वर्णन विस्तार गरिन्छ संकेत मान महाराज परीक्षित भाई सुखदेव स्वामी ने बताउनु भयो। तर यहां हमने कथा बताया थे जो किसिम हिजो भगवान कृष्ण को जन्म कथा को उपाख्यान जो भगवान कृष्ण जन्मी बक्सी अष्टमी तिथि को पूर्ण ब्रह्म सनातन जनार्दन महापुरुष पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रादुर्भाव हुई बक्सी जगत पिता सबको मन में अपार हर्ष भो अत्यंत खुशी राजी को साथ में भगवान को ध्यान मन ने कृतन इत्यादि भवर आखिरी में गोकुल में कृष्ण भगवान पुग्नुभयो। गोकुल में नंद बाबा को घर बाट जन्मेकी जगत जननी माता श्री भगवती लाई टपक्क टिपेर वसुदेव जी ने राजा कंस को दरबार में ल्याउनु राजा कंस ने सो कुरालाई स्वीकारोक्ति गरेर आखिर में त्यसलाई जब आकाश में उड़ाउन कोशिश गर्दाखेरि में त्यस अवस्थामा बड़ो आपत्तिजनक बड़ो संकटजनक बड़ो आपत्ति जब समस्याजनक को कार्यक्रम तैयारी भएको थियो त्यस बेलामा स्वयं भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जगत का मालिकले आखिरमा गोकुलमा गएर जब आनन्दसँग बिताउनुभयो दिन त्यसमा सम्पूर्ण जनले देवी आकाशमा उडिसकेपछि के भन्नुभयो भने महाराज कंस तैले मलाई मार्ने कोशिश गरेको तैले मलाई के मार्लस मलाई मार्ने वीरवद्धा चौरासी कोष ब्रज भित्रमा हिजै जन्म भइसकेको छ भनेर आज्ञा गरिबक्स्यो। अनि सबले त्यस अवस्थामा बडो प्रेम साथसँग विन्ती गरे हरे हे कृष्ण कृष्णको प्रतिमा बारम्बार विन्ती गरे अब अत्यन्त रमाइलो साथसँग कृष्ण गोकुलमा पाल्नु भएपछि